बने हो। सारस्वती बकता करके सारस्वती बकता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो, जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो।

गुरु जी दर ते बह के अरदास करनी है। असी कलयुगी जीव हां, हर श्वास भुलनहार हां। हे निरंकार, जेड़ी भी गल करते हां ना, उस नाल कूड़ दी लब लगी होंदी है, इसलिए असी गुनाहगार हां। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, तेरी बख्शिश होवे रहमत होवे ता इन्या इना पंजा तो छुटकारा मिल सकदा है, पंजा ते जीत पाई जा सकदी है। ये पंज कौन हन जो इस गरीब दे शुभ कर्मा नु शुभ कम्मा तो रोकदे हन, शुभ कम्मा नु नष्ट कर देंदे हन? ओ हन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए गुरु अर्जन देव पातशाह जी अरदास करदे हन, हे निरंकार, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखनहारे। ऐसे कठिन संसार विचों कोई किवें तर सकदा है जितने तक तेरी कृपा ना होवे, तेरी रहमत ना होवे। जे तू चाहे तो की नहीं करवा सकता, जे तू चाहे तो बख्शन विच कोई देरी लगेगी, इसलिए साढ़े ते कृपा।

मन करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के अरदास कर रहा भाई बिधि चंद ते पठे विच वड़ गया। मन जुड़ गया गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणा दा ध्यान धरिया होया ते अरदास कर रहा है राख पिता राख पिता। इधर धन गुरु हरगोबिंद साहब अकाल तख्त की पवित्र धरती से आप भाग ला रहे हैं जुड़े बैठे हैं ते अचानक संगतां नूं हुकम कीता जाओ सरोवर विचों जल भर के साढ़े उपर पा। गुरु का हुकम मन के सारियां संगतां वाहो दाई दौड़ियां पता नहीं गुरु ने की बहाना वरताया इतना जल पवाया अपने ऊपर के सारा जल जल हो गया। इधर अकाल पुरख वाहेगुरु का की कौतक वरत्या भाई बिधि चंद जदों पठे विच वड़िया ना उसे वेले बदली आई ते मोले तार मीह वसन लग गया। जां मीह वसिया पठा ठंडा पै गया। धन गुरु हरगोबिंद साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब आप दा बचन तीन काल सत है कि जेड़ा महापुरुष जेड़ा सतगुरु इथे नहीं रखिया कर सकदा वह दरगाह विच की करे। हुण बदली होण करके दिन भी छेती छिप गया हनेरा पैण लगा ते हनेरे दा फायदा उठा के भाई बिधि चंद छाश ग्रास सिमरन करदा होया गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरणा विच आ पहुंचया अमृतसर। मथा टेक के दोवे दुशाले अगे रखे हजूर दे गरीब नवाज तेरी कृपा ना होंदी ता ए कारज नहीं सी हो सकदा ए तेरी बख्शिश होई है। हुण संगतां हैरान हन कोई अज कौतक की वरत्या किसे दा पुछण ते हिया नहीं पैंदा कोई जरूरत नहीं करता जो सतगुरां दे चरणा विच अरदास करे पुछे कि ए की कौतक वरते है। भाई बिधि चंद जिदे उपर गुरु हरगोबिंद साहब दी मेहर होई सी नदर होई सी जा दुशाले रख के मथा टेकिया नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते ते की तकिया चरणा नूं तां छाले पए होए हन। गरीब निवाज ए ओ चरण तां नहीं जो मैं अपनियां अखां विच अपने हिरदे विच वसाई बैठ। बिधि चंद ए तेरी कृपा होई है भाई महाराज मेरी कृपा आख्या तूं पठे विच वड़ गयो ते साडे चरण तूं हिरदे विच वसाए होए सन ते ओ शेक सानू पहुंचदा रहा तेनू नहीं पहुंचया उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। अवेख संगता ने कितना पानी साडे उपर पाया पर फिर भी साडा सारा शरीर शालकिया दे नाल भर गया क्योंकि जिथे शेक होवे उपर पानी पा दईए तां छाले पै जांदे हन। धन हन सतगुरु जिन्हां ने साडे लई इतना कष्ट उठाया भाई बिधि चंद नैना तो जल नहीं रुकदा ओ मेरा दे साईं आप किडियां मेरा करदे हो ताती वाव नंद गई अपने सेवकां नूं किवें तुसी बचाउंदे हो पौजलां तों किवें रख्या करदे हो ताती वाव नंद गई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। जदों सारी संगत ने ए विद्या सुनी तां फिर मानो हरमंदर साहब दा श्री अमृतसर साहब दा कण कण ए पुकार उठिया धन गुरु हरगोबिंद साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब धन गुरु हरगोबिंद साहब लोक परलोक दे मालिक हो आप धन हो गरीब नवाज साडे ते भी कृपा करो जिस तरह बिधि चंद नूं बलदे पठे विचों बचाया जे सानू भी कल युग दे तत्तियां चोलियां तो हाथ दे के बचा लो। राख पिता प्रभु मेरे मोहे निर्गुण क्योंकि असी भी रोम रोम गुनाकार हां भुलन हार हां
आप सरबग हो असी अलपग जीव हां मुड़ मुड़ भुल जांदे हां इस लई साडी बांह फड़ी रखनी।

कुछ निंदा चुगली करने वाले भी खड़े हैं, बादशाह के दरबारी भी खड़े हैं। कबीर साहब जा पहुंचे, बादशाह ने देखे और बादशाह नु कबीर

संगत रहो, जौ की भूसी खाओ। जौ दी तोड़ी थोड़ा कम कटदा, कट जे गरीबी कट ले, जौ दी तोड़ी खा के गुजारा कर ले, पर नाम जपण वाले दी संगत ना छड़। कबीर साधु की संगत रहो,

को आस जगत गुरु की पार्श पेट पर्श करो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुर सिर हाथ तरियो कसमल जाय हर हनन कसमल जा हर हनन।

गुरु अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अग्नि देखत गत चरण कमल दास चरण कमल दास सब विद्मान्यो मन तभी पयो प्रसंग गुरु जोग तख्त दियन गुरु रामदास नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी दस सरी दस सर नाये रामदास सरी नाये रामदास नाये रामदास सरी हम अब गुण

रघुवंश रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। रघुवंश तिलक दशरथ कारी मन बाछे ताकी शरणं। सतगुर सेव अलखगत जाकी।

तो तुम से लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन को प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मतलब परमा चरण शरण हम अनाथ नाथ हरण अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल साखी

हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

मज्जन होत साधु तुरे आवण जान रेखित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण गाओ सा सुपाई मन तिंदे

से शब्द शरण गुरु जी भरत नारायण पदार वसा पर वाणी गुरबाणी लागे तिन हस्ते